0: विटामिन्स दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल में पाए निखरा शफाफ बेदाग गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345-9232-860 0300-585-8481।
1: आसमानी हर्बल ऑयल 100% ऑर्गेनिक न्यू हेयर ग्रोथ। खाने के फवायद, जिस्म की इजाफी चर्बी और मोटापे को कम करे, ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखे, मर्दाना कमजोरी को दूर करे, हाफजा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे, मैदे की गैस, जलन, तेजाबियत, बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करे, बवासीर, खूनी उबादी, कब्ज और मतली में मुफीद है। मालिश के फवायद, सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात, बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए, खुश्की और सिकरी और सर की जल्द के दानों से निजात दिलाए, बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे, फालिज के मरीजों और हर किस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है, जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर किस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त निहार में 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट अस 0345-923-2860

0: मोबाइल नंबर दे 0305-534-8441।
1: पेशावर टी दखवन मायार और द इतबार नुमदी उस पेशावर टी पावटीग्राम तोरगढ़ शंगला अलई कुजबांडा ताकोट के पवड़ो और गटो जनरल स्टोर के आसानी से मिलावेगी। हम दगरेंगा पेशावर टी पहली जनरल स्टोर के हम दस्तयाब दे द पेशावर टी मैन डिस्ट्रीब्यूटर जवाद खान सरा तासो पदे नंबर राबिता कवलिशे व्हाट्सएप नंबर दे 0308-941-5893 मोबाइल नंबर दे 0321-592-1911 पेशावर टी पहर प्यारे की खुन खुशबू और मायार।

0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زی مفتی عبدالقیوم دا وقت تاسو اورئ د امن ریڈیو FM 88.4 بڑگرام اسلامی نشریہ

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

अनुरूप हसीमुखी 10 दर्जा सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड आ हवा के दरमियान तनासब 22 फीसद रिकॉर्ड कर ली हुई हमदाकशान द मौसमियात महकमे तरमखा द खैबर पख्तूनख्वा पाशुमाली बरखो शंगला बेशाम कोलेपालस बटग्राम ताकोट गाजी अनुरूप हसीमुखी 10 दर्जा यकम 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ हवा के दरमियान तनासब 25 फीसद रिकॉर्ड कर ली हुई दे हमदाकशान नरबंदन माखाम 23 मिनट रपासा पाऊ बजी डूबेगी और सवा जहर 30 मिनट रपासा पा 15 बजी बा सिर वही हमदाऊ तरदीद मा मुहिम न्यूज अपडेट तथा सुवर्त और अहमद जारना दानूर खबरों और मालूमात दोपहरा अमन रेडियो नेटवर्क सरव से उस पर अहमद जाल इजाजत दलियल्ला पामा।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन जज्बातें समेटने का, मोहब्बत की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने बनने का जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, चेहरों पर मने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
2: मोहब्बत समेट कर, रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: 1857 और बल नंबर दे 0309-5029-244। कब शपे नुम याद सताए डबई सुर दे और कार्ये स्पिन दे कब शपे।
1: दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम कम के बच्चे सासो द हर किस्म मरज इलाज कवलैशी लग शुगर ब्लड प्रेशर अरक उन्निसा लादर सर दर्द दविख्तो बेवख्ता स्पिनी दिल वर्जे दिल दूसरी के दिल टेंशन डिप्रेशन स्ट्रेस एंजाइटी द मेदे मसले द गुर्दो मसले दस्तरगो मसले द गोगुनो मसले द पोजी मसले औ आग मरजुना कमचे पर डागदी औ आग मरजुना कमचे पट्टी दगा द टोलो मरजुनो इलाज ख आसान तरीके सरा बेहतरीन तरीके सरा दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बड़ग्राम के द डॉक्टर निजामुद्दीन जलाल साहब औ दगा रंगे बल सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अजमल खान साहब पर जेर निगरानी के द सहर अतो बजोना माजिगर सलोर बजो पूरी कीगी असो बिल्कुल रतल शे यो बेहतरीन इलाज यो कामयाब इलाज आगा तासो दवीना कर ला सको बोले शेब डॉक्टर निजामुद्दीन जलाल से अखपला ओपीडी द हफ्ते उड़ बने सलोर रज के भी पीर मंगल बुध औ जुमरात दगाशाने ब्याबल डॉक्टर सीनियर डॉक्टर डॉक्टर अजमल खान से अगवी अखपल ओपीडी पर दरमान होम्योपैथिक सेंटर के द हफ्ते आखिर ने द्रेव रज के भी जुमा हफ्ता औ इतवार नौ पतयात साथ ही दरमान होम्योपैथिक सेंटर जैल मोड़ बटग्राम नूर मालूमातु दपारा पति नंबर हम राबित कबूली शे 0331-47-48-317 0334-3-3-4-3-9 पते याद साथ दरमान होम्योपैथिक सेंटर जैल मोड़ बटग्राम।